0: भंग प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असी भी इन्हों के दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां धन गुरु अमरदास धन गुरु रामदास
1: धन गुरु अमरदास
0: धन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी थां है। तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान में लानी हूं नाले पता कर लांगे तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
0: छेती आना। धन गुरु रामदास।

0: 탐구로 온다. 탐구로 온다. 탐구로 온다. 왜 티고게? 왜 헛똑하게? 왜 잘 펼쳐내? 던져지네. 이때에서도 못하네. 제가 아직은 너무 지금 무려. 라지니, 라지니, 나 ठीक 호게. 나 잘 펼쳐내, 라지니. मेरा रोग तो ताकि रजनी में ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैंने पहचाना नहीं रजनी से?
1: मैं क्यों नहीं मेरे पति? जिन्होंने मैं ऐसे छिपके गई से किसी ने? किसी ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी। थोड़ा पिंगी बात। तुसी मैंने चिंपूर नहीं लाए के, तुसी मैंने संजी के दर्शन कराए, तुसी मैंने गोलगोल लाए के, तुसी मैंने छबीर वाले बाबा तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ठीक है पर थोड़ा रोग के भी ठीक हो या?
0: ये सारी करामा दर्ज चलती है। थोड़े जन तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई कागो हंस करी तो मैं रिड़ता रिड़ता ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और पानी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी तुसी कहने में फड़ के पानी कैसे ना के रहत में
0: ऐसा।
1: अच्छा तो फिर तुम ऐसा क्यों पानी पाओ? मैं अपनी अखियों में इस जल का चमत्कार देखा।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: रस तो जाए सरोवर।

0: पत्नी तू तान्य पुत्र ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास।
2: बेटी
1: पिताजी
2: अरे क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी माँ
2: बेटी मैं बड़ा शर्मिंदा
1: यात्रा न को पिताजी।
2: हाँ बेटी मैं गर्व सा तू सच ही आई जिस परमात्मा से तेरा विश्वास वो सच में सर्वशक्तिमान उस दिन भी रहा परंपरा है।
0: राजा दूनी चंद
2: नहीं संत जी सिर्फ दूनी चंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा ते हूं मैं वही राज बना लीजिए।

दानी अकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कफा कैर ना बने ता परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी पी नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना किराया चाहिए, सतनाम भला हो जाए। तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैंने जाना पै रहा, पता नहीं हुण कईआं को की कोई लिया सतनाम निकलदे पता। कार्ड आ जाए विआह है जी मदद करो, असीं फिर बाबे दे आ खुल के कही गए तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो बच्ची का विआह है। तुसीं आप कथा की थी पैर सेवा कर ली, फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तो आ 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई बार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे विआह नूं वपार बना लिया, इथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो, ये तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची का विआह है, एक तो जरूर जा भावें 10 मिनट लई जा, तेरे जाण नाल ओदा माण वधेगा। एक उन्हों 4 गुणा सगन भावें लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरो लो ना, दो भरा सुनदे हो ना सूरज प्रकाश शिया गजण दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवें शिया गजण विआह सी ना शीए की कुड़ी का, वो बरात जदों आई सी ते उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कि नहीं उदों रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण ते रवाज बदलदे जा। उन्हां कहा 7 दिन ते उहनूं फिकर लग गया सी आम चारा सिख, कहिंदे जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों क्यों दोवें नाम जपण वाले सी आखो सतनाम करन 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छकदी रही संगत छकदी रही, तोट नहीं आई संगत बढ़ गई आखो सतनाम।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्नताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नूं सत संगत।

जाया कर दीश। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री का नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया कर दी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदियां राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जान तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिदा है। ये रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौं गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पई। राजा इसते सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चों बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दित्ती ते बाहर जंदरा मार दिता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति हुई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खड़ाम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गायब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खड़ाम लब पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। साध संगत बोलो श्री, जां एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती, वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी, जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाम कित्थे है। उच्चारण करो श्री, पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। आख्या ये खड़ाम, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है ते ये कित्थों आ गई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। आख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लिए भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लिए भी मंगदी हां, तेरे लिए भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सुहारे ते मेरा भी सुहारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहा। इन्हां पगतियां नूं सिद्ध कर दिता कि जो इच्छा है सोई फल पावे। प्यारी सत संगत, जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

अजामल की ओ बैकुंठे थान, अजामल पापी सी, वेसवा दे कोल जांदा सी, वेसवा दे नाल रहन करके इन्ना ए दुष्ट हो गया कि पिता दा कहना ना मन्या, गुरु दा कहना ना मन्या, राजी दा कहना ना मन्या, अजामल पापी बन गया। पिता चल वसिया, राजे ने शहर विच बाहर कट दिता, पर अजामल फिर भी पाप करता रहा। अजामल पापी जग जाने, सारा संसार अजामल नू जानदा है कि पापी है। सत

नारायण नारायण करना, पुत्र नारायण, नारायण परमेश्वर का नाम भी। अंत वेले जमदूत आए, अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गए, पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा। नारायण के मनो जमदूत अट गए, देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया, भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वारी नाम ले

कमरे विच ले गई, सुके बस्तर दिते, सेवा कीती, बेनती कीती मां पुरशा नूं कि मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। तां मां पुरशा ने कहा, ए साडे कोल तोता है, ए लै लै। अमृत वेले उठ के

अपने नेम अनुसार कहन लगी गंगा राम कहो राम राम। ओ सप जिहड़ा पिंजरे विच बैठा सी है सी जमदूत, उसने

बहुत ही सुंदर सी, इतनी सुंदर कि इहदे नाल शादी कराने वास्ते इंद्र देवता आप तैयार होया। होर भी बहुत राजे महाराजे चाहते सन कि अहल्या दे नाल साडी शादी होवे। उस वक्त लड़ाई का खतरा

इंद्र देवता सारे पृथ्वी दी परिक्रमा करने वास्ते अपने अपने रथां ते तैयार खलोते ने। गौतम ऋषि अपनी भगवान की परिक्रमा करन

कि अहल्या की शादी गौतम ऋषि नाल हो गई है। इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि का विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, है भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगण नहीं, ओदे विच कोई विकार नहीं। हे इंसान, औगणा दे भरे होए ने, ते जिहड़ा औगणा दा भरिया है ओदे आगे मत्था टेकण दा की फायदा। हे इंद्र, भावें देवता खवांदा है पर सोचदा है पराई औरत अहल्या ओनू मैं प्राप्त करना है, ते जिहड़ा इंसान आप भुले है ओनू मत्था टेकण

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा इंद्र

गौतम ऋषि ने जल्दी नाल इशनान कीता, अपने घर वाल तुर पए। जदू घर दाखल होने लगे अपनी लड़की नूं पुछिया कि बेटा अंदर कोई गया? अंजनी कहन लगी, नहीं पिता जी अंदर कोई नहीं गया, पर एक बिल्ला जरूर गया। गौतम ऋषि अपने कमरे च दाखल होए तां देखिया कि अंदर इंद्र ने गौतम ऋषि दा रूप धारिया होया और अहल्या दे कोल बैठे। गौतम ऋषि नूं बड़ा गुस्सा क्रोध आया, उन्हां ने उसे वक्त सराफ दे दिता इंद्र नूं, ऐ इंद्र तू ठीक नहीं कीता, जा तेरे शरीर ते हजार भागों

हो गए ए इंदर शर्मिंदा हो के ओथो निकल तो रहा। गौतम रिखी ने अहलिया नु सराफ दिता तो सिल पत्थर दी बन जाएंगी। अहलिया हाथ जोड़ के कहन लगी मेरा की कसूर है जो तुसी मैनू सराफ दे रहे हो। गौतम रिखी कहन लगे सराफ दे चुका और पत्थर दी तू बन जाएंगी। अहलिया हाथ जोड़ के कहन लगी फिर मेरा उदार किस तरह होवेगा। गौतम रिखी कहन लगे त्रेते युग विच जदों श्री रामचंद्र बनवास नू जानगे ता उन्ना दे चरना दी शो दे नाल तेरा उदार होवेगा। फिर अपनी लड़की दे कोल आए लड़की नू सराफ दिता के तेनु कुआरी नू गर्व होएगा और कुकड़ बनेरे ते बैठा सी चंद्रमा उसनु अपना गिल्ला परना मारिया ते नाले सराफ दिता के तेनु एक लंक हमेशा इसे तरह चिमड़िया रवेगा। ते सचमुच उसे तरह होया अहलिया पत्थर दी बन गई चंद्रमा नु कलंक लग गया। इंद्र देवते दे शरीर ते हजारा भाग हो गए। ओ इंद्रपुरी हुण वापस नहीं जांदा।

कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। कृष्ण भगवान अपने साथियों दे नाल गेंद दे नाल खेड़दे पए सन। बड़ा समा खेड़द्या बीतिया तां कोल एक छोटा जिहा पानी दा तलाब सी। खेड़द्या खेड़द्या ओ गेंद उस पानी दे विच सुट दित्ती। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उस तलाब दे विचों गेंद कढ़ी भी नहीं सी जा सकती क्योंकि उत्थे काली नाग दैंद रहिंदा सी, जिहड़ा पानी नूं जहरीला कर छड़दा सी। कोई भी डंगर कोई पशु पानी पींदा सी उत्थे मर जांदा सी। पर गेंद जदू डिगी ते कृष्ण भगवान कहन लगे मैं गेंद कढ के लियावांगा। सारे लोकां ने रोके, कहन लगे नहीं इत्थे काली नाग रहिंदा, ओ तेनू डंक मार के ते खत्म कर देवेगा। लोक रोकदे रह गए पर कृष्ण भगवान ने पानी विच छाल मार दित्ती और देखदिआं देखदिआं पानी दे विच लोकां दे सामने डुब गए। लोकां ने कहा कृष्ण डुब गए है, पर भगवान किवें डुब सकदा है पानी दे थले। नाग नूं जाके धौण तों फड़ लिया। जदों नाग दे नाल युद्ध होया ते काली नाग हार गया और बेनती करन लग पिया भगवान कृपा कर ते मेरी जान बख्श दे। भगवान कहन लगे एक शर्त, ए जगह छड़ के चला जा तां तेरी जान मैं बख्शांगा। काली नाग कहन लगा ऐ भगवान जिस तरह तुसी कहोगे मैं करांगा, पर मैनू जानू ना मारियो, मैनू जीवन दान दियो। ता कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। काली नाग ते सवार होके एक हाथ विच गेंद फड़ी ते कृष्ण भगवान उस पानी तो बाहर आए। जदों लोकां ने देखिया कि कृष्ण भगवान जिंदा ने और काली नाग दे उत्ते सवार ने ते चार सवेरे जय जयकार होण लग पई, तो नामदेव जी कहंदे ने कि भगवान ने कंस पापी नूं मार के मुक्त कीता ते जिहड़ा काली नाग सी दुष्ट उहदी बेनती करन ते उन्हूं भी जीवन दान दिता।

पर परमेश्वर ने इन्हां दा उद्धार कीता। जिन्ना जिन्ना भी पापियां नाम जपिया उन्हां दा उद्धार हो गया। ता ऐ भाई तू भी नाम जप ताके तेरा भी उद्धार हो जावे।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो ही एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़ वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालग सभा कालख दागा दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगे बैसन नहीं जाए। आख्या जो संसार ते आके नाम नहीं जप के जांदा उस परमेश्वर दी भगती करके नहीं जांदा ओ तां अपने मथे ते दोषां दे दाग ला के जांदा है और ऐसे दाग दोष लगे हुए मथे वाले नूं पापी नूं फिर नरक भी नहीं चलदे। सतसंगत बोलो श्री जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगह बैसन नहीं जाए। कर्म मिले आखण तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्वदातार। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों ये शब्द उत्थे उचारिया जिवें जिवें साहब जी बाणी पढ़दे हन कौड़ी दे तन दा दुख घटदा जा रहा है। चरण पकड़ के कहन लगा गरीब निवाज हुण आए हो तो मैनू इस दुख तो निवृत कर दे। ऐसे करुणा दे विच जदों अरदास कीती मन करके गुरु नानक पातशाह दे चरणा विच साहब जी कहन लगे मर्दानिया जल लैके आ भाई। ते मर्दाना जल लिया साहब जी ने जल दे छटे कौड़ी दे शरीर ते मार के आख्या जप भाई श्री वाहिगुरु जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें जिवें कौड़ी वाहिगुरु जपदा है वाहिगुरु जपदा है उवे उवे तन दा कोड़ निवृत हो रहा है। सत सगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बाणी सुन के कौड़ी दे तन दा कोड़ भी दूर हो गया ते अज गुरु नानक दे दर्शन करके मन भी अरोग हो गया। तन मन करके जेड़ा रोगी सी तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन करके तन दा भी रोग चला गया ते बाणी सुन के मन भी अरोग हो गया। सात सगत बोलो श्री साहब जी कहन लगे भाई होर मंग की मंगद गरीब निवाज बहुता तन पाया लेकिन तन दे नाल कोई सुख ना मिलिया। तन पा के जे मन सुखी हो जांदा तां तन बहुत सी मैल मारियां पा के जे मन सुखी हो जांदा तां बहुत महल हन माड़ियां दितियां तुसी लेकिन मन तां भी सुखी ना होया। तिया पुत्रां नूं पा के जे मन सुखी हुंदा तां गरीब निवाज फिर जदों शरीर कौड़ी हो गया तां उन्हां ने भी कट दिता उन्हां दा भी सुख ना मिलिया। सुख तां तेरे नाम विच है सुख तां तेरी भगती विच है सुख तां अमृत वेले उठ के जपन विच है श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे समझो अमृत वेले उठ के गुरु नानक दे चरणा नाल जुड़दा है भाई उसनू कदे किसे वस्त दी कमी नहीं रह सकदी। ओ तन और मन करके सदा सुखी रवेगा जो जपेगा श्री वाहिगुरु। हुण कौड़ी गुरु नानक पातशाह दे चरण पकड़ के की अरदास कर रहा है।